0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
4: अगर आप इस साल हज के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं तो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के खतरे को कम करें। इसे मर्स भी कहा जाता है और ये एक गैर मामूली मगर सांस की शदीद बीमारी है। इलामात में बुखार, खांसी, सांस लेने में नई तकलीफ और दस्त शामिल है। खुद को महफूज रखने के लिए बीमार अफराद ऊंट, ऊंट के कच्चे दूध, कच्चे गोश्त और पेशाब से दूर रहें और बाकायदगी से अपने हाथ धोते रहें। अगर सफर के दौरान आपकी तबीयत नासाज हो तो जहाज के अमले या एयरपोर्ट के अमले को मुतला करें। अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद आप में मर्ज की अलामात जाहिर हों तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें और इन्हें अपनी साबका सफरी तफसीलात से आगाह करें। सफरी हदायात के लिए smarttraveler.gov.au मुलाहिजा करें। मजीद मालूमात के लिए health.gov.au/mers मुलाहिजा करें। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के महकमा सेहत, मजूरी और बबूदो ज़ईफ़ अल अमरी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड एजिंग की जानिब से एक पैगाम।
5: Sponsoring 2MFM.
3: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220. 2

0: तेरा क्या।
1: आपने फरमाया ऐ अहले बसरा, तुम्हारे अंदर जो 10 चीज़ें ऐब पाए जाते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं फरमा रहा, या किसी के अंदर भी ये 10 चीज़ें जब पाई जाएंगी तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता नहीं फरमाएगा। सबसे पहली चीज़ उसमें से ये है कि तुमने अल्लाह ताला की तौहीद का एतराफ़ तो किया लेकिन उसका हक़ अदा नहीं कर रहे। तुम क़ुरान करीम को तो पढ़ते हो लेकिन उसके अहकामात के मुताबिक अमल पहरा नहीं होते, यानी अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के पाक कलाम के मुताबिक नहीं गुजारते। तुम शैतान के साथ दुश्मनी का दावा तो करते हो लेकिन उसकी इताअत और फरमा बरदारी से पीछे नहीं हटते हो, यानी शैतान को दुश्मन भी कहते हो और काम सुबह शाम वो करते हो जो तुम्हें शैतान कहता है। तुम ये तो कहते हो हम अल्लाह ताला के महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की उम्मत से हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल पैरा नहीं होते। फरमाया तुम ये तो दावा करते हो कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन जन्नत में दाखिल होने वाले जो आमाल हैं वो तुम नहीं करते। तुम दोज़ख की आग से निजात हासिल करने की गिड़गड़ा कर दुआएं तो करते हो लेकिन आमाल और अमल वो कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हें दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। तुम मौत के हक होने का दावा करते हो लेकिन उसकी तैयारी नहीं करते। तुम अपने भाइयों की ऐब जोई करने में मशगूल रहते हो लेकिन अपने गुरेबान में जांग कर अपने करतूत नहीं देखते। तुम अपने रब की नेमतों से हर वक़्त लुत्फ़ उठाते हो लेकिन उनका शुक्रिया अदा नहीं करते। तुम रोज़मर्रा अपने मरने वालों की कब्रों को देखते हो, उनको दफन करते हो लेकिन उनकी मौत से इबरत और सबक हासिल नहीं करते। मुआज़्ज़ज़ सामईन, ये वो 10 चीज़ें हैं जो अहले बसरा के अंदर पाई गईं तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल न किया। हालांकि एक वक्त था अहले बसरा जो दुआ मांगते अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता। आज हम भी गौर व फ़िक्र करें क्या ये ऐब और ये बातें हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती। अगर हैं तो हमें तौबा करनी चाहिए और नेक काम करने चाहिए। मुआज़्ज़ज़ सामईन, आप मुस्लिम कम्युनिटी रेडियो 92.1 FM पर उर्दू में ये प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं।